रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग।

अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदिरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: खतरे में हैं क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चिनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम।
1: Only on Radio Chinar 90.4.
2: I feel good.
1: A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन
2: रेडियो चुनार।

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: दोस्तों, हर इस फ्रीक्वेंसी हर दिल के धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम। डू फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल। तरह तरह के वीडियोस, इंटरव्यूज, इंटरेक्शंस जो भी रेडियो चैनल में होती है, हलचल, हर पल की खबर आपको मिलेगी हमारे सोशल मीडिया से। रेडियो चैनल को फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट्स में प्यार भरपूर दें। हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल, धड़काते रहो।

0: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चना 90.4 एफएम।
1: She's paper chasing,

0: ¿Cómo la veo?
1: Dios. Dios.
2: Horace Frequency of Kashmir up enjoy Karim Mustar Show. What's up only on Radio Channel 90.4 FM. जी हाँ, दिल की धड़कन को धड़काते हैं आप और जोरों से धड़काने के लिए अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए 8899 0049 0049 9999 0049 0049 इज द नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और दिल की धड़कन को और जोरों से धड़काए अपनी बात हम तक पहुंचाए डीएम करने के लिए इंस्टाग्राम पर आइए। इंस्टाग्राम पर मिलूंगा ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से। जी हाँ, वक्त हो चला है रेडियो चुनार पर आज का वेदर अपडेट आप तक पहुंचाए, तो ब्रदर आइए सुना जाए आज का वेदर।
3: रेडियो चिनार वेदर अपडेट।
2: वैसे बादल देखकर आपने अंदेशा तो लगा ही लिया होगा कि बादल बरसेंगे। दिस इज एन आउटकम फॉर टुडे और कल के मुकाबले 3 डिग्री टेम्परेचर कम रहेगा।
3: वेदर अपडेट।
2: जी हाँ, वो घड़ी आ गई जिसका कश्मीर इंतजार कर रहा था, क्योंकि गर्मी के चलते बहुत सारे लोग वो कंप्लेनिंग है इस गर्मी का कोई तो तोड़ और तोड़ है कुदरत के पास।
3: वेदर अपडेट।
2: आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। दोपहर होते होते देयर आर चांसेस कि बादल बरसेंगे भी। आज सूरज ढका रहेगा और वही अभी की बात करें तो यूवी इंडेक्स फाइनली आज वेरी वीक पर है। Humidity 68%, wind speed 0 km per hour, visibility 4 km. Aaj ka sunrise hua 5:28 par, aaj ka sunset hoga 7:46 par. Yahan barsaat ka mausam aur ye gaana na suna jaye ho nahi sakta. Radio Channel 90.4 FM, hardest frequency par main hu Jogsu, sitting hooked mere yaar, dhadkate raho.

मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय राहुल, कैसा है तू? बहुत दिनों से तेरी आवाज नहीं सुनी ना, कुछ बोलना यार।
1: क्या बोलूं?
0: अरे कुछ भी बोलना यार।
1: क्या और भी कोई मेरी आवाज सुन रहा है?
0: हाँ नहीं नहीं कोई नहीं है यार, मैं अकेला हूँ यार।
1: देख पल्लू, मैं तुझे सालों से जानता हूँ, बनने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही मैं किसी को अपनी आवाज सुनाना चाहता हूँ और ना ही किसी की आवाज सुनना चाहता हूँ।

0: Zeus. कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल होता है व्हाट्सएप पर आ जाता है। आजकल बिल्लियां बड़ी वायरल है, कोई बिल्ली हाईफाई दे रही है, कोई बिल्ली छत से कूद रही है, कोई बिल्ली म्याऊ करके लाखों दिलावराज कर रही है। ये वाली बिल्ली ना भैया म्याऊ नहीं किया, च्याँ ट्याँ सब कर दिया, क्योंकि इस बिल्ली ने किया है प्रदर्शन सिस्टम का। क्योंकि बिल्ली जिसका बच्चा, मतलब छोटा बिल्ली का बच्चा, नन्ना सा मुन्ना सा क्यूट सा बिल्ली का बच्चा बीमार था, तो बिल्ली ने उसे मुंह में दबोचा और ले गई वेट्स क्लिनिक। अब ये नज़ारा देखकर लोग हक्के बक्के रह गए कि बिल्ली को कैसे पता बच्चा बीमार है तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। देखिए ये कुछ नया है, ये कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि ये जो वीडियो इंटरनेट पर देखा गया तो लोगों ने कहा ये बिल्ली कौन से जन्म में है और कौन से सनम में है। डॉक्टरों ने भी इलाज किया, बच्चे को बाहर छोड़ा, बिल्ली ने मुँह में उठाया और वापस लेकर चली गई अपने घर। आजकल जानवर भी ना कसम से नेक्स्ट लेवल हो गए हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है इलाज कहां पर होता है और कैसे होता है। अब वीडियो वायरल था वो सब पर आ गया। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूं जॉक्स, तड़काते रहो।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-800-180-7178 1-800-180-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ियूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

रेडियो चैनल 90.4 एफएम और दिल की धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सअप व्हाट्सअप शोज में आज का अमरनाथ का अपडेट है। जी हाँ, बताते हैं आपको कि टेम्परेचर के चलते

स्पेशली फॉर शिवलिंगम जो है वो रिड्यूस होने लगा है, और उसके चलते जो टेम्परेचर में शिफ्ट आया है उसके चलते डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया है दैट देयर कैन बी रेन शावर्स एंड फ्लैश फ्लड थ्रेट्स इन द रीजन. वक्त रहते ही जरूरी है कि सेफ्टी गाइडलाइंस और SOPs को फॉलो करें. वही यात्रियों की जो तादाद है ज्यों की तू है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं या प्री रजिस्टर करके आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको जगह मिलेगी, और जो भी तत्काल रजिस्ट्रेशन के सहारे रहे हैं या जो लोग सोचते हैं कि वहां पहुंच कर रजिस्टर करेंगे उन्हें दिक्कत सामने आ सकती है. इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM. आप बने रहें, सुनते रहें, धड़काते रहें.

दोस्तों, रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आज का थॉट ऑफ द डे, आज का थॉट कहता है, अ स्माइल इज द बेस्ट मेकअप अ गर्ल कैन वेयर। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन सिटिया धड़काते रहो।

What is frequency? Hər kədər kənə enjoy kər rəhə məzdar show. What's up? What's up show kə səfər mən apar həm çudhə huyə jəhən Radio Chunar ka sath aur aapka pyar jo banata hai Radio Chunar ko sahi mere yaar. बरबर के अपना साथ दीजिए अपनी बात हम तक पहुंचाए बताए क्या है आपके दिल में वाणी जो आप चाहते हैं पूरी दुनिया को सुनाने और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन अट अट नौ नौ नौ सिफर चोर नौ सिफर चोर नंबर आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं याद रखिए आप डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मिलूंगा ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से व्हाट्सएप शो और व्हाट्सएप शो में सादिया हमारे साथ जुड़ी हैं देखते हैं सर आज पुराने गाने सुनकर मजा आ गया देखिए सादिया मिक्स चलते हैं गाने और जो आपकी पसंद है आपको पसंद आ गई तो हमारी पसंद ये है कि आपकी पसंद पसंदीदा हो अब इससे ज्यादा राइम नहीं कर सकता थैंक यू सो मच शबीर हमारे साथ जुड़े हैं लिखते हैं सर बहुत टाइम के बाद आज मन किया आपसे बात करूं वैसे क्या आपको फोन कर सकता हूं देखिए आप फोन व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं बस ये है कि टू द टॉपिक बात होगी या टू द पॉइंट बात होगी आप जो भी कहना चाहें जैसे भी कहना चाहें कह सकते हैं रेडियो चुनार आपका है आप सबसे है थैंक यू सो मच शबीर हमसे जुड़ने के लिए तारिक हमारे साथ जुड़े हैं देखते हैं सर लेदर का काम करता हूं और रेडियो चुनार दिन भर सुनता रहता हूं रेडियो पर जब भी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होती है तो मैं ऐप पर स्विच करता हूँ ओके सो गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच इस प्यार और इस मतलब कंसिस्टेंसी के लिए यही प्यार है जो रेडियो चैनल को खास बनाता है थैंक यू सो मच तारिक आपका हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप शो में आज हम बात करने वाले हैं आर्मी आइकन्स की जी हाँ ऐसे आइकन्स जिन्होंने इंसानों को जिन्होंने जनता को जिन्होंने युवा को जिन्होंने हर एक देशवासी को इंस्पायर किया कि उन्हें देखकर गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और ऐसी मिसाल कायम की कि दूसरे लोग उन्हें देखकर इंस्पायर होते हैं कि हम भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरे रेडियो चुनार में आज का टॉपिक आर्मी आइकन्स आप भी ये टॉपिक से रिलेटेड हमसे बता सकते हैं 8899904904 इज द नंबर हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार सिर्फ धड़क

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

रीजनल 90.4 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप शो में आज बात हो रही है आर्मी आइकन्स की। जी हाँ, टॉपिक है आर्मी आइकन्स, जिससे रिलेटेड हमारे साथ जुड़ी है सादिया उल्फत। लिखती हैं उल्फत के सर, आर्मी, इंडियन आर्मी हमारे हीरोज हो, चाहे कहानी छोटी हो या बड़ी, लेकिन हम हर पल हर दम इंडियन आर्मी से इंस्पायर होते रहे हैं, होते रहेंगे। सर, मैं भी एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन मजबूरी के चलते अप्लाई नहीं कर पाई। लेकिन जब भी किसी आर्मी, इंडियन आर्मी के ऑफिसर को देखती हूँ, जवान को देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं वो जिंदगी जी रही हूँ। शायद कभी मौका मिले कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ, दुआ कीजिएगा कि मेरे सपने सच हो। उल्फत, पहले तो आपसे ये कहना चाहेंगे कि देखिए, हम आर्मी से बाहर रहकर भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, अपने देश से रिलेटेड हो, अपने नेशन से रिलेटेड हो, या हर एक इंडिविजुअल से रिलेटेड हो। यू कैन बी अ कॉन्ट्रीब्यूटर इन डिफरेंट वेज। रही आर्मी की बात, तो आर्मी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे आप नहीं चुनते, जो आपको चुनता है। सबको ये मान सम्मान हासिल नहीं होता, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारा शौर्य, हमारा जज्बा, हमारी अपनी देश के लिए लॉयल्टी हमें कहीं ना कहीं एक बेहतर सिपाही, एक बेहतर देशवासी बनाती है।

रेडियो चुनाव 90.4 FM आप बने रहें, सुनते रहें, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें। याद रखिए, आपने डाउनलोड करना है हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से सर्च करें प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर रेडियो चुनाव 90.4 FM। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव। या अगर आप घर या गाड़ी में सुनना चाहते हैं तो ऐप के अलावा भी लॉग इन कर सकते हैं हम www.radiochunar.com पर। मैं हूं जॉक्सूस, आप सुनते रहें हर दिल की धड़कन को।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

रेडियो चुनाव 90.4 एफएम अब एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप। मैं हूं आपका साथी जैक ज्यूस। मजेदार शो व्हाट्सअप में अगली मजेदार पेशकश टिकटॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। जी हाँ, टेक वर्ल्ड से अपडेट साथ ही साथ बॉलीवुड का तड़कता भड़कता एक न्यूज अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जरा सा इंतजार देते रहे प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार। झक से इसके साथ मजेदार शो व्हाट्सअप मेरी जान, धड़काते रहो।

0: साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: पानी, पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास

0: bunch of zoos. Going out.
1: Bollywood News.
2: दोस्तों रेडियो चैनल 90.4 एफएम मजदार शो वासपर वासप शो में बॉलीवुड न्यूज बॉलीवुड न्यूज में आइए आपको बताते हैं एसबीसी 63

का नया रूप और नया लुक देखकर सलमान खान के फैंस भाई जान मेरी जान तेरी जान करते हुए थक नहीं रहे हैं। जी हाँ, अपकमिंग बिग बजट पैन इंडिया एक्शन थ्रिलर जिसमें सलमान खान होगी और नयनतारा भी। बताया जाता है सिर्फ एक सीक्वेंस को शूट करने के लिए 100 की तादाद में सैकड़ों लोग लाए गए ताकि सीक्वेंस जो है दमदार हो। पिछले कई सालों से सलमान खान बोल रहे हैं क्या लगता है इस बार तो आ ही जाएंगे। रेडियो चुनौर की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर बने रहें, सुनते रहें और दिल की धड़कन को धड़काते रहें। मुस्तार शो वो सब चौकसूस के साथ सिरे हक धड़काते रहे।

Jesus. यार जेसस के साथ मजेदार शो हुआ सब और आज की जर्नी यही तक. इट्स अ वीकेंड गाइस, जस्ट हैव योर वीकेंड एंड एंजॉय इट टू द फुलेस्ट. मैं तो जा रहा हूँ लेकिन आपसे जुड़ने आ रही है और शदीबा लेकर शो चनार बीट्स बीट्स ऑन रिपीट. एंड मेरी मुलाकात मंडे को होगी आपसे. यू हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड एंड एंजॉय योर संडे. रिमेंबर टिल वी मीट अगेन कीप योर हेड्स हाई वॉक टॉल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव यू ऑल. Bye bye, Tata, take care, Kushba, Shuma, Salama.

Saturday night party on my mind, क्योंकि मेरे माइंड में नहीं है बल्कि हर एक एम्प्लॉय के माइंड में पारी शाड़ी रेस वेस तो है ना। Radio Chennai Braga, सो चुका है शो चुनार ब्रीज का फुल ऑन वाइब एंड ट्राई बीट्स ऑन रिपीट शो है ना ये बॉस चुनार ब्रीज।

Chinar Beats ve Darje Diva. Only on Radio Chinar 90.4 FM.

It's on repeat show चुनाव repeat. आप enjoy कर रहे हो on your radio चुनाव 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक तो है ही, बट बातें आपकी और मेरी मैटर करती है. जैसे मैंने सोचा कि आज सैटरडे है, थोड़ा एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई. आई नो आपकी भी होगी, बिकॉज बहुत सारे प्लान्स है अभी एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है. सैटरडे है ही, मंचेस हम दिल थाम के होते हैं कि भैया कब आएगी सैटरडे और कब हम अपनी प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे. सो फाइनली सैटरडे आ चुकी है और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुशी हर एक इंसान को जो है छुट्टी की होती है कि भाई एक हफ्ता गुजर गया, अब है वीकेंड और मज़ा आ रहा है. मज़ा तो आएगा ही ना, तब इतने सारे हमारे जो ज़िंदगी में चीज़ें चल रही होती हैं और उसके बाद भी हम फिर प्लान बनाते और वो भी कब होता है एग्जीक्यूट, यानी कि संडे. अब छुट्टी की खुशी किसको नहीं होती, एक दिन छुट्टी मिल जाए, एक्स्ट्रा मिल जाए तो डबल मज़ा होता है. अब डबल मज़ा ये भी है कि यहाँ पर आप बैक टू बैक सॉन्ग्स एंजॉय करते हैं. मैं हूँ दीबा, अब सुन रहे हो दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 पे. मुझे बताइए क्या है आपके प्लान्स, क्या आप सोच रहे हैं और क्या है आपके हालात, जज्बात और ख्याल. मैं और तू तो है ही, बस इस तू में हम बस बैक टू बैक सॉन्ग्स को हिट करने जा रहे हैं.

जी हाँ, इट्स रेस ऑन माय माइंड बैक टू बैक सॉन्ग्स ऑन योर रेडियो चनार 91.4 एफएम. आप सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, रेडियो चनार. हर दिल की धड़कन है तो हक से धड़काना है ना बॉस.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM। हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का, शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।
3: हाय, मैं हूँ आरजे ज्यू।
4: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
5: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
6: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

Beats on repeat, show Chunar Beats, ab enjoy kar rahe only on Radio Chunar 90.4 FM. Dei sari baatein ho rahi hain and we are talking about National Highway of Jammu and Kashmir. Both sides se traffic ka lo kiya ja raha hai. Aap aaram se aa sakte ja sakte hain aur apni destination tak pahunch sakte hain. But if we talk about guidelines, jo heavy motor vehicles hain, unko 7 baje, yani sham 7 baje tak hi allow kiya jayega. Aur uske alawa agar light motor vehicles ki baat kare, wo aaram se aap aa sakte ja sakte hain. Aapko koi रुकावट नहीं हो सकती, बोथ साइड से आपको अलो किया जाएगा. बट वी हैव टू बी केयरफुल क्योंकि एक स्ट्रिक्ट ट्रैवल जो रेगुलेशंस है वो अमरनाथ जी यात्रा की वजह से हमें टाइमिंग का काफ़ी ख्याल रखना है. एंड लोडेड जो ट्रक्स हैं उनके लिए फिर से बता दूं कि 7 बजे तक ही आप क्रॉस कर सकते हैं जम्मू, या फिर आप कश्मीर से जम्मू जा रहे हैं, जम्मू से कश्मीर आ रहे हैं. सो बी केयरफुल, बी कॉशियस. इस टाइम पे ही आपको या तो आप आर जा सकते हैं, आप आर जा सकते हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट की गाइडलाइंस की वजह से हमें अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना पड़ता है और ये गाइडलाइंस हमें काफ़ी मदद भी करती है ताकि हम अपना प्लान सही से बनाएं. उसके अलावा सीट बेल्ट लगाना यानी कि हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी. उस पर ये नहीं है कि आपको कोई बोले कि आप सीट बेल्ट लगाएं. देखिए, हमारे पास अगर कोई चीज़ अवेलेबल है हम उसका पालन क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं सीट बेल्ट लगाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी और हमें इसे निभाना है. ये अगर मैं कहूँगी कितना भी, बट अगर आप काफ़ी समझदार है, आपको पता हो ये चीज़ है तो उसको इस्तेमाल करना है, तो आई मीन उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कोई भी नहीं हो सकता. एक पॉजिटिव मैसेज हमारी सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है. एक छोटा सा एफर्ट किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, यानी कि हम एक सही मैसेज देकर किसी की लाइफ बचा सकते हैं. हम दीवा, आप सुन रहे हैं ऑल इस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 91.4 FM. कुछ कहना चाहते, बताना चाहते हैं, बताइए मुझे. शो कैसा बन जाए 8999904X व्हाट्सएप कीजिए. शो चुनाव रिपीट्स का ऐसा बन जाए. देखिए, हम तो बन चुके हैं, बस आप भी बन जाइए शो का हिस्सा, सुना कर मजेदार सा किस्सा, क्योंकि आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 FM.

Jeremy. Chinar Beats ve Dharce Diva. Only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: पर हम
1: जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी
0: तुम पर हम
2: जी हाँ। फिलहाल के लिए मैं तो कहूँगी कि टॉपिक के आर भी पार भी और ढाई बजे तक आपका और मेरा साथ बराबर है। हम तो अटके हैं और प्यार के लिए मजबूर तो नहीं है, क्योंकि मेरी पूरी वाइब और ट्राइब इतनी खास है कि बस यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। और फिलहाल के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एंड आप भी शो का हिस्सा बनेंगे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्या एम होता है, क्या थीम होता है, क्या अवेयरनेस होती है, ओवरऑल वाई वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। बताइए, शो का हिस्सा बन जाइए, आप भी बता सकते हैं अपनी राय 8899904904 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम।

ये रास्ता अभी थोड़ा सा लंबा है, यानी कि थोड़ा सा और मैं रुकने वाली हूँ, आपके साथ बात करने वाली हूँ ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम. अभी के लिए शो चुनार 20 ख़त्म हो चुका है. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, बिकॉज पॉपुलेशन एंड वी आर रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर. एंड ये इस साल का थीम है, इस पर हमने बात की और कितना ज़रूरी है हमने इन्वेस्ट करना राइट्स पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे. वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो यूथ जनरेशन, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, हमें रियलाइज होता है कि होप कितना ज़रूरी है और जो हमारा आने वाला कल है उस पे इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है. ये इस साल का थीम भी, यानी हमारे लिए मैसेज भी है कि हमने इस चीज़ को समझना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को मौका देना है, जो हमारा फ्यूचर है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते खोलने. एंड फिलहाल के लिए मैं तो यही पे हूँ, फिलहाल के लिए हम टाटा बाय बाय कर देते हैं शो चुनार बीट्स को, क्योंकि शो म्यूजिक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आपके फेवरेट ट्रैक्स आप सुन पाएंगे, यानी कि 8899904904 पर आपने कॉल करनी है, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके आप शो में शामिल हो सकते हैं. बस जल्दी से फ़ोन उठाइए 8899904904, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके आप शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन सकते हैं और अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं. तो जल्दी कीजिए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए.

Show Music On Demand और सबसे पहले रिक्वेस्ट ईशा की आई है इस ट्रैक के लिए फ्रॉम द मूवी रईस, आप इंजॉय कीजिए लैला मैं लैला। और मिलने के लिए तो बस आपने अकेले आने की ज़रूरत है, आप थोड़ी डर सकते हैं क्योंकि आप है मेरी वाइबन ड्राइव। तो आपने 8899-0494 पर कॉल करनी है, रेक्स व्हाट्सएप करके आप अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, शो कैसे बन जाए। आप सुन रहे हैं हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

शो म्यूजिक ऑन डिमांड और अयमन की रिक्वेस्ट कि लड़की बड़ी अनजानी है। देखिए हम अनजाने नहीं है आपके लिए, आप तो जान पहचान वाले हैं, आप तो प्यार है। रेडियो चुनार के खास हमारे वाइब और ट्राइब है मेरे लिए, तो आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं और अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 8899904904 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप करके आप अपना रिक्वेस्ट जो है आपकी वो हम तक पहुंचा सकते हैं और सुन सकते हैं अपना फेवरेट ट्रैक। अभी एम एन की रिक्वेस्ट पे ये ट्रैक आप सुनते रहे रेडियो चुनार 90.4 FM, शो म्यूजिक ऑन डिमांड ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM। खामोशियां जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते। अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे, बोलेंगे जरूर बोलेंगे, क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर, एवरी वेंसडे एंड सैटरडे। रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: स्टार्ट तो हो चुका है और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी हॉस्ट है, दोस्त है। कौन है ये लड़की?
1: आरजे अश्रा एंड आरजे दीवा इन द हाउस।
0: बिल्कुल। और देखिए मजा आता है ना कि जब हम शुरुआत ऐसी करते हैं ना कि बहुत ही अच्छा लगता है, हम आपसी में बात करते हैं कि क्या चीजें चल रही है, कौन सी सी चीजें जिन पे मैं बात करनी चाहिए।

और कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है एक वेमेन के लिए, बिकॉज इट्स वेमेन ओरिएंटेड शो. बट हमने सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं रखा फीडबैक, यानी कि हर कोई सुन सकता है, अपना फीडबैक बैक दे सकता है, बिकॉज इट्स नेसेसरी. कि मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं ना कि ये तो सब कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, वैसे एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है. तो ज़रूरी है हम सुने कि

0: वो कहते हैं ना कि दुर्गा के रूप में आती है और अपने शक्ति के रूप में आती है और काम करती है ऐसे कि वो कहते हैं ना कि हम एक औरत में देवी देखते हैं और उस देवी के इतने सारे वो कहते हैं ना कि
1: रूप अवतार
0: रूप होते अवतार होते हैं। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये तो असराई बोलेगी।
1: वो इसलिए है क्योंकि देखिए जब एक औरत के इतने रूप हैं, इतने अवतार हैं, देवी है, शक्ति है, दुर्गा है,
0: बिल्कुल,
1: और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में देखें अभी वी नीड टू अप्रिशिएट कितना कुछ किया है लड़कियों,
0: बिल्कुल,
1: और इतने लॉन्ग रन में कितना कुछ हुआ है।
0: yes.
1: चाहे किसी भी फील्ड में एप्रिसिएशन की बात हो, रेडियो गर्ल्स पे अप्रिशिएट किया जाता है, रेडियो गर्ल्स पे हम इन सहेलियों के बारे में बात करते हैं, और कुछ अगर ऐसे इश्यूज भी होते हैं हेल्थ रिलेटेड जहाँ पे अवेयरनेस की जरूरत है उसके बारे में भी बात होती है,
0: बिल्कुल। एंड स्पेशली आज टॉपिक भी यही है कि हम बात कर रहे हैं उन दुर्गा के बारे में जो नाऊ दुर्गा है, जिनका नाम है और जिनका हम से जब सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, और जब हम एक देवी को देखते हैं कि हम बोलते हैं कि जो नारी है एक देवी है, और क्यों औरत को दुर्गा कहते हैं, क्यों ये नाऊ रूप है उनके, क्या है वो नाऊ चीजें, उनके बारे में आज शो पे बात।
1: बिल्कुल, नौ अवतार होते हैं दुर्गा के, और जैसे कि अभी श्री अमरनाथ जी यात्रा जो भी ऑन गोइंग है, सो दिस आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट दिस दीज आइडल्स ऑफ कोर्स। सो वेमेन आइडल्स के बारे में बात हो गई आज, तो बन जाएगा शो का हिस्सा।
0: बिल्कुल, और शो का हिस्सा बनने के लिए बस नंबर तो आपको पता ही है, क्या है नंबर?
1: 8899904904 इस नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप पर बन सकते हैं सॉरस फ्रीक्वेंसी का हिस्सा।
0: बिल्कुल,
1: मैं हूं आरजे अस्ट्रा, ये है आरजे दीवा।
0: बिल्कुल, देखिए इन्होंने बोल दिया, बोलने की जरूरत ही नहीं है। सो आप सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, रेडियो 99.4 FM, शो है रेडियो गर्ल्स। आप सुनिए अपना फीडबैक हम तक पहुंचाइए।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM। खामोशियां जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
3: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे,
1: बोलेंगे जरूर बोलेंगे,
3: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
1: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
3: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
1: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हाय, मैं हूं अस्टा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम. और कुछ ही देर पहले शो शुरू हुआ है. दिस इज अ रिमाइंडर दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो. 8899904904 इज नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. मैं हूं अस्टा, सुन रही है रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: हाय मैं हूँ आरजे ज़ू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: Chinar Beats with RJ Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

लगता है रूम में रह गए।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान

0: ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: कोक स्टूडियो भारत, सब्सक्राइब नाउ।
2: आदिनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मसनद सुनो।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन देखे. सैटरडे है, कल संडे है, फंडे, और अपनी आप फैमिली के साथ कहीं ना कहीं जाने का प्लान ज़रूर होगा. आप कहीं जाना चाहते होंगे, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना ख्याल रखें एंड डू मेक श्योर टू मेक क्रेजी मेमोरीज विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. मैं वस्त्रा सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Dhar Chediba, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

yaptın? Radio Çınar. Radio Çınar. Three songs.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।
1: Chinar beats with Harsh Deva only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM। Chin up, chin up, chin up, chin up, chin up. Charmy.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chunar 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chunar 90.4 FM. 4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Vis-a-vis.
1: Sir, on stage, 5 minutes.
0: Okay. Tomari, major. लगता है रूम में रहेगा।

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: कोक स्टूडियो भारत सब्सक्राइब नाउ।
2: खादिनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मसनद सुनो।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम। रेडियो चनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: モニーカ
1: ー。वो आ गया, देखो, देखो वो आ गया।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

सिगरेट, चेन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: बिटिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: फोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: ये साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

उसका क्या मेरा है, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूं, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूं, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।